दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: This is Sunrise Retro.
1: London का Retro Asian Mix Sunrise Retro को सुनने के लिए शुक्रिया. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स. कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777. Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

0: back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओ जरनल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: This is Sunrise Retro.
1: Every great story begins with one journey. Some become adventures, some become love stories, some begin with a sunrise you never forget. At Global Travelers, we create luxury holidays, destination weddings and honeymoons designed around your story. Visit globaltravelers.notjusttravel.com and quote Sunrise Retro when you inquire. Global Travelers, not just travel, because every story deserves an unforgettable journey.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
4: Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-777. Ye hai Sunrise Retro.
0: Back to back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.

0: Drive on Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: कब हुआ अब क्या सुनाए

0: सनराइज रेट्रो।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
3: Sunrise Retro.

0: बड़ा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

0: Sunrise Retro.
1: Attention!
2: Craving something truly delicious? Well, I've got some amazing news. For this September only, a free £30 credit. You can now get General Bilimoria's Canteen, serving fresh your favourite authentic Indian dishes, delivered right to your door. Just search General Bilimoria's Canteen on the Google Play Store or Apple App Store to download our brand new app and order your next incredible meal. No delivery fee, no service charge when you order through the GB Canteen app. And for this September only, when you download the app, you will receive a generous £30 credit. Terms and conditions apply.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: लंदन का रेट्रो एशियन मिक्स सनराइज रेट्रो को सुनने के लिए शुक्रिया. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।